0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ. जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्रैम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रति वर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया।

ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नर ओ नारायण ऋषि रूपरे बद्रिकाश्रमरे कठोर तपस्या कले। तप भांगिबाकु इंद्र उर्वशीको पठाई विफल हेले। ध्रुवर तपस्यारे संतुष्ट होइ ताको ध्रुव पद देले। पृथ्वी रूपरे लोकंकु अन्न संकटरु रखिले। नाभि ओ सुदेवीकठारु ऋषभ यज्ञरु हयग्रीव एवं मत्स्य रूपे प्रलय जलरु वेद उद्धार कले। समुद्र मंथन बेले कूर्म ओ दानव हिरण्यकशिपुकु मारिबाकु नरसिंह रूप धारण कले। गजकु कुम्भीर कबलरु रखिले। बामन रूपरे तीनि पाद भूमि नेबा आळरे त्रिपुर जिणिले। नारद मध्य तांकरि अंशरे जात बोली ब्रह्मा।

0: सप्ताहे विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य रविवासरे मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति इति वार्ताः।
1: सुनुथिले संस्कृतरे संवाद रिलिकरि प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्लीरु। आकाशवाणी ब्रह्मपुर समय वर्तमान स्टूडियो घड़ी सकाळ 7टा कार्यक्रम सुनुछंती FM बैंड 100.6 MHz चुके ओ प्रसार भारतीर मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR ऐप चुके।

0: बताए। न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
2: अब तो एक ही ऐप पर उपलब्ध।
0: डाउनलोड करें आज ही टेली लॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम टिटनाथ सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ टिटनाथ सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: आम राज्य में एबे स्वतंत्र सघन संशोधन SIR कार्यक्रम आरंभ हो जाए। एथिपाई 30 मई 2026 रु 28 जून 2026 पर्यंत बूथ स्तरीय अधिकारी माने प्रत्येक घर को घर जाई प्रति निर्वाचकंकु दुईटी परिगणना फॉर्म देबे। फॉर्म गुडीकु voters.eci.gov.in वेबसाइट रु मध्य डाउनलोड करिपारिबे। फॉर्म दुईटी पूरण करबा परे एहाकु BLMक निकटरे दाखल करंतु एवं तांगठारु प्राप्ति स्वीकार ग्रहण करंतु। अधिक सूचना पई वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 को कॉल करंतु किंबा वोटर सर्विस पोर्टल किंबा ECI नेट ऐप बुके कॉल हिति BLO सुविधा रा उपयोग करंतु। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसांग द्वारा जनहित रे जारी।
6: बेटा शौर्या, ये तुम्हारा रूम है जो पहले मेरा स्टडी था और उससे पहले तुम्हारे दादाजी का।
7: वाओ पापा, ये घर कितना पुराना है।
6: बेटा इस घर ने 3 पीढ़ियां देखी है
7: और अब तक इतना मजबूत खड़ा है।
4: कुछ चीजें वक्त के साथ और मजबूत होती है, जैसे यादें और चिनाट सीमेंट का सुपर हिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चिनाट सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
2: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध।
0: डाउनलोड करें आज ही टेली लॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हर घर में कई कहानियाँ होती हैं, कुछ पुरानी यादें कुछ नए लम्हे, हर दीवार हर कोना दास्तां बयां करता है
4: और इन पलों की मजबूत नींव है टिटनाथ सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ टिटनाथ सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस फॉर योर होम।
8: कार्यक्रम सुनुच्च आकाशवाणी ब्रह्मपुर केन्द्र रु FM बैंड रो 100.6 चुकी और प्रसार भारतीय मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR ऐप जुगे श्रोता बंधु प्रस्तुत करुछु शिशु मानक पई हमर विशेष कार्यक्रम शिशु राइज। आज रे उपस्थापना रे अछंती बबीता मिश्रा।

ভোগ সেতে মুখান্তি জগ মোহনয় থাই গাড়ি দিলে তো মের রসি বসতি।

0: आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बजाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सके हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में रुके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिंट ऑलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
3: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिंट ऑलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की यह भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लायन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब ₹1.50 प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर ₹13.50 प्रति लीटर का शुल्क लाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क ₹9.50 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोटायम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क। उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन द अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेयेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है।

0: गया है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
1: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स

0: स्वागत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
1: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटन और रॉयल चैलेंजर्स फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटन और रॉयल चैलेंजर्स

0: मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शुहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
1: केरला माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा कर्नाटक मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान गुजरात हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरला में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवली। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अंबिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में डूब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिनाउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में

0: जिक्र वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो
1: आप दोनों एक ही पर उपलब्ध।
2: डाउनलोड करें आज ही टेली लॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आम राज्य में एवं स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर कार्यक्रम आरंभ हो जाई छि। एथिपाई 30 मई 2026 रु 28 जून 2026 पर्यंत बूथ स्तरीय अधिकारी माने प्रत्येक घर को घर जाई प्रति निर्वाचकंकु दुईटी परिगणना फॉर्म देबे। फॉर्म गुडीकु voters.eci.gov.in वेबसाइट रु मध्य डाउनलोड करि परिबे। फॉर्म दुईटी पूरण करबा परे एहाकु बीएलएमक निकट रे दाखल करंतु एवं तांकठारु प्राप्ति स्वीकार ग्रहण करंतु। अधिक सूचना पई वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 को कॉल करंतु किंबा वोटर सर्विस पोर्टल किंबा ईसीआई नेट आप रे बुक के कॉल विथ बीएलओ सुविधा रो उपयोग करंतु। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसा के द्वारा जनहित रे जारी।
4: श्रोतंतु प्रचार करूछु केतटी ओडिया कथा चित्र गीत। प्रथम गीतटी नेइछु चलचित्र झियोटी सीतापरिरु। कंठदान करिछंती हेमलता एवं प्रणव पटनायक। संगीत सरोज पटनायक। गीत रचना करिछंती निजाम।

0: चेटिनाट सीमेंट का सुपर ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाट सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल आंचल से विध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: अच्छा दास बाबू, आपनको घरटा 1970 रे तैयार हितला, राइट? हेले ए पोटरे एते स्ट्रांग केम दिछि?
3: अरे एला एकदम सिंपल कोन सही थी पाई मु सेतले मोर विश्वास रखतिली एवं आजि मध्य चेटिनाट सीमेंट परे
4: शक्ति जहां वर्ष वर्ष ने बरम पीढ़ी पर रही थाए। चेटिनाट सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्ष दृढ़ मूल दुआ। चेटिनाट सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: आकाशवाणी ब्रह्मपुर श्रोताबंधु आसंतु शुणा कि सुगम संगीत। प्रथम गीतटी नहींचु नरसिंह महापात्र रचनार। गीतटी गायछन्ति गीता पट्टनायक एवं सुभाष दास।

वाले लोगों में सहन शक्ति में कमी हो जाती है, लगातार खांसी और स्वाद और गंध की अनुभूति में भी कमी होने लगती है। ये बात हम आज कर रहे हैं क्योंकि आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं। आई एम कलाम फिल्म का गाना, के की आवाज में मानवेंद्र का लिखा हुआ गाना, अभिषेक राय का संगीत।

अब हम बात करते हैं तंबाकू सेवन के जो दीर्घकालिक परिणाम होते हैं उसके बारे में। फेफड़ों का कैंसर जो है वो तंबाकू से होने वाली सबसे मुख्य बीमारी है। इसके अलावा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये भी जो बीमारियां हैं फेफड़ों की कार्यक्षमता को धीरे धीरे कम करती चली जाती है और उसके बाद नष्ट कर देती है। इससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हृदय रोग या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और तंबाकू जो लोग उपयोग करते हैं उनमें मुंह के कैंसर, मसूड़ों की बीमारी और दांतों की जो बीमारी है वो बहुत देखी जाती है। तो इन्हीं बातों के मद्देनजर प्रतिवर्ष 31 मई को ये दिन मनाया जाता है। और अगर हम चाहें तो ये जो तंबाकू है इसके सेवन से बच सकते हैं और लाखों लोगों की जो जान इस के सेवन से चली जाती है उसको रोका जा सकता है। तो इसके लिए आज नो टोबैको डे यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हम तंबाकू को यानी कि टोबैको को कहें नो और अपने स्वास्थ्य को बचाएं, अपने जीवन को बचाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजरंगी भाईजान फिल्म का गाना केके की आवाज में कौसर मुनीर के बोल, संगीत है प्रीतम का।

आज के चित्रलोक कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना इकबाल फिल्म से के सलीम मर्चेंट, डोमिनिक क्लिंटन और साथियों की आवाजें, इरफान सिद्दीकी के बोल, संगीत है सलीम सुलेमान का।

इकबाल फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

यह है विविध भारती। आज के प्रकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बुढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

0: मौसम ऐसा है कि आंगन आंगन में बरस रहा है रिमझिम पानी।
1: रिमझिम बरसे पानी, आज मोरे अंगना रिमझिम बरसे पानी, आज मोरे अंगना उड़े चुनरिया धानी, आज मोरे अंगना रिमझिम बरसे पानी, आज मोरे अंगना।
0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक बहुत ही वरिष्ठ और अलबेले संगीतकार की। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार अनिल बिस्वास को।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: अनिल बिस्वास का जन्म 7 जुलाई 1914 को बारीसाल ईस्ट बंगाल में हुआ था। आज ये जगह बांग्लादेश का हिस्सा है। अनिल बिस्वास के पिता थे जेसी बिस्वास। बहुत कम उम्र में बालक अनिल को संगीत का चस्का लग गया था। दिन रात वो संगीत के सुरों में खोए रहते थे। इसके अलावा एक और क्रांति हुई थी और वो ये कि बालक अनिल स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। वे जुगांतर पार्टी का हिस्सा बने थे और भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए 14 बरस की उम्र में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जब वो जेल से रिहा हुए तो घर से केवल 5 रुपए लेकर कोलकाता भाग निकले। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। कोलकाता आने के बाद उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटे मोटे काम उन्होंने किए और आगे चलकर उनकी मुलाकात सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष से हुई। आगे चलकर अनिल बिस्वास की बहन पारुल घोष का विवाह पन्नालाल घोष के साथ हुआ था। यही वो दिन थे जब अनिल बिस्वास रंग महल थिएटर से जुड़ गए। यहां वो एक्टिंग करते, गाने गाते और सहायक संगीत निर्देशक के तौर पर काम भी किया करते थे। इसके कुछ बरस बाद काजी नजरुल इस्लाम के लिए उन्होंने हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी की ओर से एक रिकॉर्ड भी तैयार किया था और इस तरह अनिल बिस्वास का खूब नाम हो गया था। फिर आया साल 1935। अनिल बिस्वास कोलकाता से मुंबई की ओर रवाना हो गए। मुंबई में अनिल बिस्वास ने फिल्म धर्म की देवी में संगीत दिया। सन 1936 में वो सागर मूवी टोन से जुड़ गए। ये सागर मूवी टोन रामानंद सागर के सागर आर्ट से बिल्कुल अलग है और इसके मालिक हुआ करते थे चिमन लाल देसाई। यहां अनिल बिस्वास ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे

सन 1940 में आई फिल्म अली बाबा का ये गाना आपने सुना सुरेंद्र और वहीदन बाई की आवाजों में। इस गाने को लिखा था आह सीतापुरी ने। इसके बाद आया साल 1943। ये वो दौर था जब अनिल विश्वास हिमांशु रॉय और देविका रानी की बॉम्बे टॉकी से जुड़ गए थे। सन 1943 में उन्होंने फिल्म किस्मत में संगीत दिया। अशोक कुमार और मुमताज शांति के अभिनय वाली ये फिल्म कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में 3 साल और 8 महीने चली थी और आगे चलकर फिल्म शोले ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा था। फिल्म किस्मत के गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे।

1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूरा देश अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए तत्पर था। फिल्म किस्मत का ये गाना युवाओं का एंथम बन गया था। ये गाना युवाओं की प्रेरणा था। जहां कहीं भी प्रभात फेरियां या जुलूस निकलते, नौजवान गाते, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज सरकार इतनी खौफजदा और नाराज हो गई थी कि उन्होंने कवि प्रदीप और अनिल विश्वास के नाम के वारंट तक निकाल दिए थे और इन दोनों कलाकारों को भूमिगत होना पड़ा था। फिल्म किस्मत में सिर्फ यही एक हिट गाना नहीं था। इस फिल्म का ये गाना सुनिए।

0: सो रहा है शोरगुल न मचा धीरे धीरे।
1: इस फिल्म में अनिल बिस्वास की बहन और सुप्रसिद्ध गायिका पारुल घोष ने ये मीठा गाना गाया था।
2: मन

अनिल विश्वास की खासियत ये है कि उन्होंने शास्त्रीयता का दामन कभी नहीं छोड़ा। उनके संगीत में आपको अतिरिक्त वाद्य बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ेंगे। जिन वाद्यों की जरूरत है बस वही वाद्य उनके संगीत में होते हैं। कभी पन्नालाल घोष की बांसुरी सुनाई देती है तो कभी पंडित राम नारायण का सारंगी। बड़े बड़े गुणी और माहिर शास्त्रीय संगीतज्ञों ने उनके लिए साज बजाए थे। महबूब खान के लिए अनिल विश्वास ने 3 फिल्मों में संगीत दिया था। सन 1940 में आई थी औरत, आगे चलकर इसी फिल्म को दोबारा महबूब खान ने मदर इंडिया के नाम से बनाया था, लेकिन तब संगीत नौशाद का था। अनिल विश्वास ने महबूब खान की अगली फिल्म में संगीत दिया, सन 1941 में आई बहन, और सन 1942 में फिल्म रोटी आई जो अनिल विश्वास के संगीत से सजी थी। फिल्म रोटी में अनिल विश्वास ने अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर से गाने गवाए थे। सुनते हैं ये गाना।

ये को सहारा दिया, उन्हें पहला मौका दिया या उन्हें कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ाया। सुप्रसिद्ध गायक तलत महमूद को पहला ब्रेक सन 1949 में फिल्म अरजू में उन्होंने दिया था।

दरअसल तलत महमूद और अनिल विश्वास से जुड़ी हुई एक घटना है। फिल्म आरजू के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और तलत महमूद बहुत ज्यादा दबाव और तनाव में थे, इसलिए अपनी आवाज की मशहूर लर्जिश के बिना गा रहे थे। उनकी आवाज का वो कंपन गायब था। अनिल विश्वास ने तलत महमूद को डांटते हुए कहा था कि तुम्हारी आवाज का ये कंपन ही तुम्हारी खासियत है और इसे तुम्हें कभी छोड़ना नहीं है। फिल्म आरजू के जरिए तलत महमूद की गायकी की कामयाबी की यात्रा शुरू होती है। इसके बाद तलत महमूद ने अनिल विश्वास के लिए कई गाने गाए।

0: 1940 में फिल्म औरत में अनिल बिस्वास ने जो गाना गाया था वो है ये।
1: चाहे करता तेरे बराबर।

0: वैसे इसके अलावा अनिल बिस्वास ने कई फिल्मों में गाने गाए हैं। विविध भारती के गानों के खजाने से फिल्म सौतेला भाई के इस गाने का अंश सुनिए, जिसमें अनिल बिस्वास मन्ना डे के साथ गाना गा रहे हैं।
1: ऐसे का भरोसा न है वैसे का भरोसा, सता है मेरे यार तो पैसे का भरोसा, कि पैसा ही मालिक पैसा ही दाता, पैसा ही तेरा यारम तो प्यार है

1945 में फिल्म पहली नजर में मुकेश से उन्होंने ये गाना गवाया। इसे लिखा था आह सीतापुरी ने। मुकेश को कुंदनलाल सहगल की छाया से बाहर लाने में और अपनी आवाज का एक मुहावरा खोजने में बहुत मदद की थी अनिल विश्वास ने। सुनते हैं पहली नजर फिल्म का ये गाना।

सन 1948 में फिल्म अनोखा प्यार के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास की मुलाकात मीना कपूर से हुई। सन 1959 में उन्होंने मीना कपूर से शादी कर ली।

0: कहता है।
1: लता मंगेशकर ने अपने कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि अनिल बिस्वास ने उन्हें ये सिखाया कि गाना गाते हुए सांस का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से छिप कर सांस ली जाती है कि सुनने वाले को पता भी नहीं चलता गायक ने कब सांस ली और कब सांस छोड़ी। सन 1949 में जब लता मंगेशकर कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ रही थी, अनिल बिस्वास ने फिल्म लाडली का ये गाना गवाया।

बात यह है कि फिल्म फरीब के एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले अनिल विश्वास के घर पर दिलीप कुमार और अशोक कुमार किसी कारण से बैठे थे। महफिल चल रही थी। अनिल विश्वास ने अपने हारमोनियम पर यह गाना इन दोनों कलाकारों को गाकर सुनाया और पूछा

मुकेश को न केवल अनिल बिस्वास ने पहला मौका दिया बल्कि उनके करियर के कुछ यादगार गाने हैं अनिल बिस्वास के नाम, फिल्म आराम का ये गाना।

अब सुरैया की बात कर ली जाए। सुरैया ने अनिल विश्वास के लिए दो मशहूर गाने गाए हैं। एक है फिल्म जीत का ये गाना, जिसे लिखा प्रेम धवन ने।

के सुप्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली का लिखा गीत फिल्म गजरे, आवाज सुरैया की, साल 1948।

सन 1965 में फिल्म छोटी छोटी बातें का संगीत देने के बाद मुंबई से अनिल बिस्वा का मन उचाट हो गया था। वो दिल्ली चले आए और दिल्ली में आकाशवाणी के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के निदेशक बन गए। यहाँ उन्होंने कई समूह गान कंपोज किए।

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में अनिल बिस्वास की हैसियत फिल्म संगीत के एक पितामह सरीखी है। उन्हें हमारा विनम्र नमन।

0: आज की फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था संगीतकार अनिल विश्वास पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: मेडिसिन यूनिट गुरुतर रोगी को तुरंत चिकित्सा जोगाइ थाए। अभिज्ञ डाक्टर एवं तालीमप्राप्त कर्मचारी सहित आम आपणक सुरक्षा को प्राथमिकता दे।
1: 24 घंटा जरूरी कालीन चिकित्सा और ट्रॉमा केयर पर भरोसा करंतु सम हॉस्पिटल शीतलपल्ली तारातानी रोड ब्रह्मपुर सुलभ सुविधाजनक और उन्नत स्वास्थ्य सेवार अनन्य ठिकाना।
2: तो ए रोग गुड़ा सुस्थ हो पार कि
3: निश्चय हो पार
2: आम ए विषय कथबार्ता अटकल नहीं जावा। हेलो स्वास्थ्य पे कटे कार्यक्रम।
4: हेलो
2: नमस्कार सुना
4: जाउ छी। नमस्कार नरसिंह बाबू को पंतारो।
2: हां नरसिंह बाबू केमती अछंती कहिले?
4: आ भलो सर भलो
2: भलो अछंती। आज कोन समस्या रहले आपनकर कोन्तु सर सुनु छंती?
4: हां ए आंठो डाप विषय रे पछले तो
2: हां
4: कोइले तो जे सुनतु तो पतरी बली
2: बली हां पछरन तो सर सुनु छंती।
4: हां सर नमस्कार।
3: नमस्कार नमस्कार नरसिंह
4: आया
3: बात को फाइलेरिया को संपर्क नहीं बात फाइलेरिया दिटा जाक कंप्लीटली अलग अलग रोग बात गंठी को इफेक्ट

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटी फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 400 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट में होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ नेशनल का सिलेक्शन है। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर जब भी त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था।

0: जिंदगी खराब नहीं होती, सपने दिखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचे तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है बट करके बहुत कम दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज हम सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की इंस ऐसे नहीं है कि वो सब 10 या सब 10 उनके अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम लोगों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक गोल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले एनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर सेमीफाइनल में तोड़ा 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में

0: ये तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है, और बिहार झारखंड पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी।
1: पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुस जाए तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचे तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कम दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुस जाए तो इस पे
0: सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती। अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है, उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का

की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंशी उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है।

साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशन आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गीर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन

डॉल्फिन को बताते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बताते, हम गंगा की जैव विविधता को बताते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बताते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकलते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी एक साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान

0: सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
1: मृतयः भविष्यन्ति कश्चित् तडागे प्लवं स्मरिष्यति कश्चित् च मित्रैः सह तडाग तटे क्रीडनं कश्चित् तस्याः मृत्तिकायाः सुरभिं स्मरिष्यति बाल्यकालस्य एतादृश्यः स्मृतयः जीवितपर्यन्तं हृदये प्रतिष्ठिताः तिष्ठन्ति सखायः एतादृशीनां स्मृतीनां रक्षणाय प्रेरणादायिनी कथा एका उत्तरप्रदेशस्य बस्ती जनपदात् प्रकाशमागतास्ति बस्ती जनपदस्य आकाशगुप्तः स्वग्रामस्य मनोरमा नदीं दृष्ट्वा अत्यन्त दुखिनः भवति स्म यतः यां नदीं सह स्वबाल्यकाले स्वच्छां सजीवां च दृष्टवान् आसीत् स कालेन सह

0: अग्रे गच्छति। मम भवद्भ्यः आग्रहः अस्ति स्वं परितः एतादृशान् प्रयत्नान् अवश्यं पश्यन्तु। ये जनाः साजहिताय उत्तमानि कार्याणि कुर्वन्ति तानि परिचिनुत, तेषां प्रशंसां कुरुत, तेभ्यः शिक्षाम् आप्नोतु। शक्यते चेत् स्वयमपि कस्यचित् सत्कार्यस्य अङ्गं भवतु। आगामि मासे मन की बात कार्यक्रमे अन्याभिः प्रेरणादायिनीभिः गाथाभिः सह पुनरपि भवद्भ्यः सह सम्बद्धो भविष्यामि। बहु धन्यवादाः, नमस्कारः।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम मशहूर पार्श्व गायक केके को याद कर रहे हैं। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है सॉरी भाई, आवाजें केके, सुनिधि चौहान और अभिषेक नलवाल की। गीतकार हैं अमिताभ वर्मा और संगीत दिया है विवेक ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सॉरी भाई का ये गीत, और आइए अब सुनते हैं के और तुलसी कुमार का गाया फिल्म नहले पे दहला। इस फिल्म का गाना गीतकार हैं पंछी जालुनवी और संगीतकार हैं आनंद राज आनंद।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमें अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं।
0: कार्यक्रम का अगला गीत हिनेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ, गाने वाले कलाकार के आर सुनीति चौहान, फिल्म का नाम हमराज़।

0: 2 जून सही सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बाद में घुलेगी आत्मीयता की रोली। 2 जून विविध भारतीय सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री बितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति।

तो बस इसी जाने पर आज इस सुरीले सफर को हम तय करने वाले हैं, ठीक है? आप हैं ना हमारे साथ? हुँ? तो कार्यक्रम का यह है पहला गीत, राजेंद्र कृष्ण की ये रचना है, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, फिल्म का नाम है अदालत। इस गाने से जुड़ा है शब्द साजना।

ये स्वर थे लता मंगेशकर और आशा भोंसले की, फिल्म का नाम था अदालत। जी तो हमारे बहुत सारे श्रोता लगातार अपनी पसंद भेज रहे हैं कि ये गीत हो सकते हैं, और हो सकता है कि हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद आज मिल भी रही है, हमें लग रहा है ऐसा। तो आप तय करिएगा, सुनते रहिएगा और बताइएगा कि कौन सा गीत हमारी पसंद के गीतों से मिला है, यानी हमने अपनी पसंद के गीत आपके लिए रखे हैं, क्या उसे आपकी पसंद भी मिल रही है। एक श्रोता लिखती है कि कुछ पीड़ाएं अस्थाई होती हैं, अदृश्य होती हैं, और जाना सुखद भी है और दुखद भी। कोई जीवन से अचानक चला जाए, इससे ज्यादा दुख क्या हो सकता है, और जब मन को पता है कि ये जाने

कि क्या आपकी जिंदगी से भी कोई आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका चाहने वाला यूं चला गया कभी? बताइएगा दिल से, सच्चाई के साथ। दूसरा सवाल, सवाल नहीं एक बातचीत कह सकते हैं, आपके मन के भाव, आपकी जिंदगी में क्या घटित हुआ, शायद ये जानना कि क्या आप किसी रिश्ते से बाहर आए हैं, रूठ कर आए हैं, निकल कर आए हैं? ऐसा कभी आपको लगा कि मैंने वो रिश्ता क्यों तोड़ा? इस पर बताइए हमें कि आप ऐसी गलती हुई या आपने जो किया सही किया क्या? कई बार क्या होता है, हम विचारों का जब हमें मेल नहीं मिलता, हम विचारों से तालमेल नहीं बिठा पाते, तो हम उस रिश्ते को खत्म कर देते हैं। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, और बाद में हमें लगता है कि अरे थोड़ा सा हम रुक जाते, थोड़ा सा और संभल जाते, थोड़ा सा और समझ लेते किसी को, तो शायद ये किसी की जिंदगी से ही चले आना नहीं हो पाता या नहीं होता। तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपका कोई निर्णय गलत हुआ होगा? आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

जी कितना खूबसूरत गीत, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। हम भी अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कहीं मत जाइएगा इस कार्यक्रम के सिवा, सुनते रहिएगा, बने रहिएगा सुरीले सफर में हमारे साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर पूरा करना बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि इबारत की शुरुआत दूर चले जाने से होने वाली पीड़ा है। हमें अपनी जिंदगी में कितने अनजान लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ भूल जाते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे कहते हुए भी कुछ हम भूल जाते हैं। बचपन के दोस्त जवान में बिछड़ जाते हैं, कभी कभी

सुरीला सफर आपने कुछ दिलचस्प बना दिया है। हमेशा की तरह इस बदलाव से लोगों में उत्कंठा जरूर जागृत होगी। हमारे श्रोता बंधु रविवार का आनंद उठा लेंगे। कार्यक्रम में आपने जान ला दी है, वरना कार्यक्रम उबाऊ नीरस और अप्रासंगिक हो चला था। अपने रोजमर्रा के कार्यों से जल्दी जल्दी निबटकर आराम से कुछ सोचकर लिखने बैठूंगा। नमस्कार। एक श्रोता लिखते हैं कि जाने यानी एक छोटा सा शब्द है, लेकिन अपने भीतर भावनाओं का एक विशाल संसार समेटे हुए है। जाने शब्द में कई रंगों में ढता है, कहीं विदाई की कसर, कहीं प्रेम की नमी, तो कहीं यादों की गहराई। जब कोई अपना दूर चला जाता है, तब जाने शब्द में बिछड़ने का दर्द झलकता है। जाने शब्द केवल भाषा का हिस्सा नहीं, बल्कि इंसान की भावनाओं का एक जीवंत आईना है, जिसमें प्रेम, विरह, उम्मीद और यादें एक साथ झलकती हैं। हमारे लिए सबसे खुशी की बात ये होती है कि हमारे श्रोता कितनी सुंदर तरीके से अपनी बात कहते हैं और यूं कहें कि अपनी भारत को किस तरह से पेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतनी खूबसूरती से अपनी बात कहने का। हाँ, तो चलते हैं इस शब्द की ओर, दीवाने। कौन सा गीत है पता चला ना आपको? आपकी पसंद से मेल खा रहा है ये गीत, जरा टटोलिए।

एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ, कार्यक्रम को सुनूंगा। बिल्कुल रहिएगा हमारे साथ अंत तक, यही तो इल्तिजा है आज कि जाना नहीं है बीच में छोड़ के। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का जाना चाहे वो जिंदगी से हो, घर से हो या फिर विचारों से हो, ये वो अवस्था होती है जब मन का खालीपन भी भूलने लगता है। जिसे खोया ही न हो उसकी कमी कैसे महसूस हो सकती है। जुदाई बताती है कि कोई मन की कितनी गहराइयों तक बसा था। कभी कभी पास रहने वाले लोगों के बीच भी दूरियां होती हैं, जो कभी दूर होकर भी कोई बहुत नजदीक होता है। किसी की जुदाई हमें अपनी ताकत से रूबरू करवाती है और सिखाती है कि जो हम प्रेम करते हैं या हम जिनसे प्रेम करते हैं उनकी कर समय रहते कर लेनी चाहिए। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं हम और आज के गाने जरूर सुनेंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने शब्दों की माला को गद्यांश में इस तरह पिरोया है कि अपने आप एक भाव उभर कर आया है और वो योग और विरह का पर्याय बना है। जाना शब्द कई भाव लेकर आता है, ये न केवल बिछड़ना दर्शाता है मगर मन की उस अवस्था का चित्रण करता है जहाँ एक ओर खालीपन है तो दूसरी तरफ वियोग और मलाल की मनोदशा को इंगित करना। आज गाने विरह की इस स्थिति को गहरा बना देंगे और शायद थोड़े अवसाद की स्थिति में भी रहेंगे गाने सुनकर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अवसाद में चले जाएंगे, लेकिन हाँ उन यादों को हम जरूर कहीं ना कहीं फिर से याद करेंगे कि कहीं हमने किसी को खोया था या कोई हमारी जिंदगी से किसी भी कारण से चला गया था या दुनिया से चला गया था। आज उस खालीपन को हम इस सुरीले सफर में महसूस करेंगे, बस और कुछ नहीं। आई सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हसरत जफूरी की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम आरजू। जी ये गीत सुनने के बाद आप समझ जाएंगे रूठ कर। हमारे बहुत सारे श्रोताओं की पसंद मिलती है इस गीत के जरिए है।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के इस कार्यक्रम से बिछड़ जाएंगे क्योंकि किसी पूजा में जा रहे हैं तो बिछड़ने का दुख हम नहीं समझ पा रहे हैं। अरे दुखी मत होइए, कोई बात नहीं, आप पहले अपने कार्यक्रम को निपटाइए, उसके बाद फिर भी सुन लीजिएगा। रोज ही ये कार्यक्रम आपके लिए हम तो पेश करते हैं। वही श्रोता लिखते हैं कि चलिए विविध भारती का ये सुरीला सफर, जहां आज वियोग की पीड़ा से महबूब और महबूबा दोनों गुजर रहे हैं, ऐसे में तो विरह के वे सुरीले गीत जो विविध भारती की ढलती जाए रात में कभी कभी सुनने को मिलते हैं, आज सुनेंगे और दोपहर में ठंडक पहुंचाएंगे। जी आप देखिए कैसा लग रहा है आपको, तपती दोपहर में गीत आपको सुकून दे रहे हैं क्या, बताइएगा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जाना केवल कदमों का सफर नहीं बल्कि भावनाओं, यादों और रिश्तों का बिछड़ना भी है जो मन को गहराई छू जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कम शब्दों में आपने बहुत गहरी बात कही। वही एक श्रोता लिखा है कि जाने वालों की सदा दिल से गूंज जाती है, कुछ यादें उम्र भर की पूंजी बन जाती है, मिलना भी एक किस्सा है, बिछड़ना भी दस्तूर है, जाने की आह से कई कहानियां बन जाती हैं, क्या बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जब कोई हमारी जिंदगी की चौखट लांघ कर हमेशा के लिए दूर चला जाता है तो पीछे सिर्फ एक अंतहीन सन्नाटा छोड़ जाता है, दिल की बस्ती ऐसी उजड़ती है कि हर कोना उनकी यादों की चुभन से रो पड़ता है, रातें जागकर कटती हैं, आंखें बंद करती हैं, उनका चेहरा ख्वाबों में आकर नींदें छीन लेता है, इंसान दुनिया की भीड़ रहकर भी अंदर से बिल्कुल अकेला और फकीर हो जाता है, जिसका मन बस पल उसी एक शख्स की धुन का रहता है। बहुत सुंदर। मुझे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की बात को पढ़कर ऐसा प्रतीत हो रहा है इसमें वियोग की पीड़ा चरम है। एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी आपके द्वारा किए गए प्रयोग शानदार हैं, आप इस कार्यक्रम को रोचक बने रखे हुए हैं, कुछ गीत आपने लिखा है देखिएगा। हाँ मुझे लग रहा है आपके कुछ गीत जो है हमारे गीतों से मिल रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। जिन जिन श्रोताओं के गीत हमारी पसंद से मिल रहे हैं उन्हें हम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई देते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के कार्यक्रम से अच्छा बिछड़ जाएंगे, मत बिछड़िएगा, आप अन्य किसी कार्यक्रम में शिरकत कीजिएगा, है ना। वही श्रोता लिखते हैं कि हमारी कोई जिंदगी से चला जाता है तो तकलीफ सिर्फ उसके जाने की नहीं होती, तकलीफ उन आदतों की होती है जो उसके साथ जुड़ गई थी, उन बातों की होती है जो अब किसी से कहीं नहीं जा सकती, उन सपनों की होती है जो हमने उनके साथ मिलकर देखे थे, ऐसा लगता है कि जैसे दिल का कोई हिस्सा कहीं रुक गया हो उसके साथ।

आज ठीक दोपहर 1 बजे आप हमारे साथ सुरीला सफर में होंगी और मैं स्वयं भी रेडियो के पास बैठकर प्रोग्राम का आनंद लूंगा आपकी मधुर प्रस्तुति के साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उससे पहले एक बार फिर से हमारे सवालों को दोहरा देते हैं कि आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपको कोई चाहने वाला अचानक चला गया हो किसी भी कारण से, ऐसा कभी आपको लगा कि आप ठगे से रह गए? लिखिएगा ये बात, हमारे श्रोता लिख रहे हैं, कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है और अब हम उन्हीं श्रोताओं को शामिल भी करने वाले हैं अगली बार। और साथ में आप किसी से रूठ कर चले आए हैं, आप किसी की जिंदगी से चले आए हैं, आपने किसी रिश्ते को धत्ता बता दिया है या आप इन्हीं के विचारों से सहमत न होते हुए आपने अपनी दुनिया अलग बसा ली है, ऐसी बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में हमारे साथ होती रहती हैं। बताइएगा आपके साथ क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है। और अब आपके लिए बहुत पुरानी फिल्म किंग कॉन्ग का गीत मैं लेकर आई हूँ। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और चित्रगुप्त का संगीत।

0: जाता है तो जा, ओ जाने वाले जा, मेरे मन से धड़कन से तू जा सके तो जानू
1: जाता है।

ग्यावासी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था किंग कॉन्ग। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे जीवन में सबसे अनमोल है हमारा समय, जो एक बार चला गया तो फिर वो लौट कर कभी नहीं आता। वो समय चाहे अच्छा हो बुरा हो, हमारे जीवन में उस समय की सिर्फ यादें रह जाती हैं।

वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि किसी के जाने का दर्द दुनिया के सबसे गहरे दुखों में से एक है, चाहे वो रिश्ता टूटने की जुदाई हो या फिर किसी अपने का हमेशा के लिए चले जाना। ये अकेलापन और खालीपन इंसान को अंतर तक झकझोर देता है। व्यक्ति को ये दर्द ता उम्र साल रहता है। बहुत सी बातें अधूरी रह गई हमारे दरमियान जो अचानक यूं गया कि अलविदा कहने का मौका भी ना मिला। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी के चले जाने से सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ घर की हंसी चली जाती है, दीवारों की बातें चली जाती है, आंगन की धूप और चौखट की छांव चली जाती है। वो जाता है तो लगता है जैसे समय कहीं ठहर गया हो, घड़ी चलती रहती है मगर जिंदगी की सुइयां अटक जाती हैं। रूठ कर जाने वाले शायद नहीं जानते कि उनके पीछे कितनी रातें अनाथ हो गई। तकिया आंसुओं से भीगता रहता है और नींद दरवाजे तक जाकर बिना दस्तक के लौट आती है। अब हर आहट पर दिल चौंकता है, हर कदम की आवाज में उनका नाम सुनाई देता है। हवा चलती है तो लगता है शायद उसका आंचल छू कर गया हो मगर जब मुड़ कर देखते हैं तो सिर्फ खाली पर खड़ा मिलता है। उसके बिना घर घर नहीं लगता, सिर्फ ईंटों का एक ढेर लगता है। दिए जलते हैं मगर उजाला नहीं होता, लोग मिलते हैं मगर कोई अपना नहीं होता। दिल उसकी धुन में ऐसे रोता है कि धीरे धीरे जोगी बन जाता है। न कोई इच्छा बचती है न कोई ख्वाब, बस एक नाम रह जाता है जो हर सांस के साथ टूटता रहता है। वो कभी कभी लगता है कि वो लौट कर आएगा अचानक और कहेगा मैं यही था तुम्हारे पास, मगर फिर सच सामने आता है और उम्मीदों का आखिरी दीपक भी आंधी में कांपने लगता है। साजना तुम्हारे जाने के बाद मैंने जाना कि दर्द की भी एक आवाज होती है, वो आवाज रात भर मेरे सीने में रोती है और सुबह तक मेरी रूह को भिगो देती है। क्या बात है, अब तो बस यही दुआ है कि जहां भी हो खुश रहो, क्योंकि मोहब्बत का सबसे बड़ा दुख यही है कि जिसे भूल नहीं सकते उसकी खुशी के लिए अपने आंसू छुपाने पड़ते हैं। और सच तो यह है कि कुछ लोग घर छोड़कर नहीं जाते, वे दिल में ऐसा बसेरा कर जाते हैं कि उनके जाने के बाद पूरी उम्र उनके लौटने का इंतजार जिंदगी बन जाता है। क्या कहूँ मैं आपके लिए, इतना सुंदर लिखा है कि मेरी आंखें नम हो गई हैं और गला रुंध गया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में रिश्ते कमजोर होते चले जा रहे हैं और ऐसा होता है कि हम अकेले हो रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है हमारे सवाल के जवाब में कि हाँ, मेरा एक ऐसा दोस्त दुनिया से ही चला गया जो बचपन से मेरा सच्चा मित्र था। और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हम दोनों के विचार मिलते थे और वो भी मेरी तरह रेडियो और विविध भारती प्रेमी था। मुझे उसकी कमी बहुत खलती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात लिखी है। वाकई चाहे दोस्त दुनिया से जाए या जिंदगी से जाए, जब याद आती है तो वाकई लगता है कि कितना अकेलापन है। एक श्रोता लिखते हैं कि राग किरवानी में बेहतरीन गाने से शुरुआत आपने की, फिल्म अदालत का गीत जा जा रे जा साजना बहुत सुंदर था। अरे वाह, आपने राग किरवानी का जिक्र भी कर दिया। एक श्रोता लिखते हैं कि निश्चिंत रहिए मंदाकिनी जी, आज मैं बीच में कार्यक्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्या खूब, बहुत सुंदर, शुक्रिया, मेहरबानी कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। यकीन मानिए, ये छोटा सा कि मैं हूं ना आपके साथ, ये वाक्य आपके दिल और दिमाग में कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है, ये आपने अपनी जिंदगी में जरूर महसूस किया होगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपसे एक सवाल है मंदाकिनी जी, कि अगर आपने किसी के लिए बहुत किया हो और उसने आपकी ही कब्र खोद दी हो, तो इस तरह के व्यक्ति को का बिछड़ना ही बेहतर होता है कि नहीं? शायद वहां दूरियां ही बेहतर होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार ऐसा होता है कि हम जिनके लिए अपने आप को खपा देते हैं और पता चलता है कि सामने वाले ने तो वाकई हमारी बाटी लगा दी है, तो ऐसी स्थिति में दुनिया बनाना श्रेष्ठ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूर जाने के कई कारण भी होते हैं, इस गीत में ही बताया गया है। फिल्म दो बदन का गीत, आशा भोसले की आवाज, शकील बदायूनी की बोल और रवि की धुन।

0: मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया।
1: प्रधानमंत्री कहते ज्योतिर्विज्ञान सर्वदा युववर्गों पर कौतूहल सहित अनुसंधान दिगरे प्रेरणा प्रदान कर ज्योतिर्विज्ञान क्लब देशव्यापी क्रमशः लोकप्रिय होवपीढ़ी को क्लब में संश्लिष्ट होगा अवकाश दिनगुड़िक प्लानेटोरियम परिदर्शन करने को अनुरोध कर उत्तर प्रदेश एक केनाल में फसी रही डल्फिन उद्धार उपर आलोकपात कर प्रधानमंत्री कहते नमामि गंगे अभियान अधीन निर्मित भारत प्रथम गंगा डल्फिन उद्धार आंबुलांस एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर भविष्य पीढ़ीपी अमूल्य प्राकृतिक ऐतिह सुरक्षा दिगरे पदक्षेप ग्रहण करने को प्रधानमंत्री देशवासी को आह्वान देखते विभिन्न क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य कर नागरिकों संपर्क में प्रधानमंत्री यह अवसर में आलोकपात कर समाज में निरंतर कार्य कर लोकों ठू शिक्षालाभ कर निजे किसी भल कार्य अंश लेवाक प्रधानमंत्री समस्त आह्वान प्रधानमंत्री सूर्यगर निःशुल्क बिजुली योजना अधीन गत शुक्रवार दिन 15,000 छात उपर सौर प्रकल्प स्थापन कर नूतन नवीकरणीय शक्ति मंत्री प्रहलाद जोशी आज ए संपर्क में सूचना दे कहते ए क्षेत्र में देश में नूतन रेकर्ड स्थापन हो सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट से जोशी कहते महाराष्ट्र में गोटे दिन में रेकर्ड 4,700 सौर प्रकल्प स्थापन पंजीकरण हो महाराष्ट्र पर गुजरात क्षेत्र में द्वितीय राज्य हो गुजरात में इतिमध्ये 6,00,000 छात उपर सौर प्रकल्प स्थापन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दृष्टिकोण आधारित स्वच्छ शक्ति व्यापकता को यह प्रतिफलन करी श्री जोशी कहते आडमिराल कृष्ण स्वामीनाथन भारत 37वां नौसेना मुख्य भाव आज दायित्व ग्रहण करडमिराल दिनेश के त्रिपाठी से दायित्व ग्रहण कर गणमाध्यम को संबोधन कर आडमिराल स्वामीनाथन कहते देश स्वार्थ सुरक्षा दिगरे भारतीय नौसेना सर्वदा सजग रही नौसेना दक्षता वृद्धि और आधुनिकीकरण दिगरे गतिशील आडमिराल स्वामीनाथन कहते विदायी नौसेना मुख्य आडमिराल दिनेश के त्रिपाठी कहते भारतीय नौसेनार नेतृत्व नेता सम्मान विषय था आमेरिका ईरान सहित एक परमाणु चुक्ति निकटतर हो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते जदि आलोचना विफल हुए तेज सामरिक कार्यानुष्ठान एकमात्र विकल्प भाव ग्रहण करने को पड़ो एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप कहते परमाणु अस्त्र ईरान को दूरे रखा आमेरिका प्रशासन प्राथमिकता प्रदान करमाणु अस्त्र विकास और हासल ठू दूरे रखा ईरान सहमत हो श्री ट्रंप दावी करदि दुई देश मध्य आलोचना एक कठिन परिस्थित गति करथापि एक सकारात्मक ढंग से आगोथ्वा श्री ट्रंप आमेरिका एक शांतिपूर्ण चुक्ति में पहुंचा को इच्छा प्रकाश करुछि तेबे दाबी पूरण न होले कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को बाध्य हेबो बोली से ट्रंप सूचना देछंती। दिल्लीर साकेत मेट्रो स्टेशन निकट में एक व्यावसायिक कोठा भुशुड़ी पड़ तीन जन मृत्यु हो गत सन्धे घटी दुर्घटन 11 जन दिल्ली एम्स जयप्रकाश नारायण आपेक्स ट्रमा सेंटर को चिकित्सा अणाई एम्स कर्तृपक्ष सूचना अनुजाई से तीन जन मृत घोषणा करे अन्य 5 जन चिकित्साधीन अच्छा तेज चिकित्सा पर अन्य 3 जन घर को प्रत्यावर्तन कर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज घटनास्थल परिदर्शन कर उद्धार और रिलीफ कार्य समीक्षा कर सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट मुख्यमंत्री कार्यालय सूचना अनुजाई उद्धारकारी दल गत रातिर निरंतर कार्य जारी रखिंट मेहरोली पुलिस स्टेशन एने एक फौजदारी मामला दायर कर नूआदिल्ली में आसंता काली द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया प्रतिरक्षा मंत्रीस्तरीय आलोचना बैठक अनुष्ठित प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया उप प्रधानमंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस बैठक में सहअध्यक्षता करेंगे प्रतिरक्षा मंत्रालय दिया सूचना अनुजाई उभय पक्ष प्रतिरक्षा सुरक्षा सहयोग सामरिक दक्षता शिल्प सहयोग वृद्धि आदि विभिन्न प्रसंग में मत विनिमय द्विपाक्षिक प्रतिरक्षा संपर्क को अधिक मजबूत करने रणनीतिक विश्वास को सुदृढ़ सहयोग वृद्धि भारत प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थिरता एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने आदि विभिन्न क्षेत्र में सहभागितार नूतन मार्ग उन्मोचन करने को बैठक में आलोचना होवार आशा करा सरकार कपा उपरे आमदानी सीमा शुल्क को अस्थायी भाव में छाड़ कर आसंता कालठारु अक्टोबर 31 तारीख पर्यंत यह समय सीमा बलबत्तर रखे केन्द्र बयन मंत्रालय देखा सूचना अनुजाई कपा चाषी स्वार्थ और कपा मूल्य श्रृंखला को विचार कर निष्पत्ति ग्रहण कर आईपीएल क्रिकेटर चलित संस्करण में आज फाइनाल मैच अनुष्ठित होबो अहमदाबाद नरेन्द्र मोदी स्टेडियम गुजरात

0: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध एडमिरल कृष्णा स्वामी नाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने और अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की तीन पट्टिकाएं मिली हैं
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी

0: बेलपन्ना पनाकम नीरमोर सांभरम कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांसो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 100 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल सेलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
3: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के के नीचे भगाए, और मैं कोशिश कर रहा हूं मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
1: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जुड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती है। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरुड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी

0: newsonair.gov.in और हमारे ऐप News on AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
1: नेवी, एयरफोर्स,
2: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
1: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को आज नई दिल्ली के सब ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है, हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जुड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएब अल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार देश के

0: अभी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ नमस्कार
1: एतबळ जाय आपण माने कार्यक्रम सुनथले रिले करी प्रचार करथलो आकाशवाणी दिल्ली रो आकाशवाणी कटक समय दिन 2:30 बजे 30 मिनिट आंचलिक संवाद रिल प्रचार करूछु किछ क्षण मध्ये

0: बौद्ध जिला प्रशासन पक्षर एसआईआर बाबदे व्यापक सचेतनता सृष्टि करने उद्देश्य जिलापा कार्यालय पक्ष एक स्वतंत्र प्रचार रथर शुभारंभ कर जिलापा तथा जिला निर्वाचन अधिकारी विभूति भूषण नायक शुभारंभ कर सचेतनता रथ जिलार विभिन्न ब्लक पंचायत और सहरांचल बुली भोटर मान एसआईआर बाबदे सचेतन कर आसंता जुलाई मास 16 तारीख में महाप्रभु विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा पूर्व जून मास 29 तारीख में स्नान यात्रा और नीतिकांति श्रृंखलित करने दैतापति नियोग सहित किपरि उत्तम समन्वय रहिबो से संपर्क आज पूरी आरक्षी अधीक्षक कार्यालय एक समन्वय बैठक अनुष्ठित आरक्षी अधीक्षक प्रतीक सिंह अध्यक्षत अनुष्ठित बैठक में दैतापति नियोग सभापति संपादक और वरिष्ठ सदस्य तमाखु सेवन और स्वास्थ्य प्रति यार कुप्रभाव संबंध में जनसचेतनता सृष्टि उद्देश्य आज विश्व तमाखु वर्जन दिवस पालन कर विश्व स्वास्थ्य संगठन पक्ष 1988 मसीह पालन कर दिवस चलित बर्ष बार्ता रही तमाखुर भ्रमात्मक उद्देश्य को उजागर करने निकोटिन और तमाखु पर पदभ्यास मुकाबला करने ओडिशा को तमाखुमुक्त राज्य भाव गढ़ी तोलने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विश्व तमाखु वर्जन दिवस आह्वान देते स्वास्थ्य मंत्री डॉ मुकेश महालिंग तमाखु सेवन अपकारिता संपर्क में निजे सचेतन होने सहित अन्य को सचेतन करने लगी परामर्श देते तमाखु सेवन अपकारिता संपर्क में विशिष्ट मधुमेह विशेषज्ञ डाक्टर लक्ष्मीधर सेंड आकाशवाणी को कहते
1: तमाखु व्यवहार अनेक दीर्घकालीन रोग भी प्रमुख कारण प्रति वर्ष 1.35 नियुत लोक मृत्यु तमाखु सेवन द्वारा हुए तमाखु सेवन द्वारा किडनी रे जो जाइए रक्तनली आउ ब्रेन को जो जाइए रक्तनली हार्ट को जो जाइए रक्तनली संकुचित करे संकुचित करी ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक किडनी रे लोअर किडनी रे डायलिसिस दरकार हुए किछि दिन परे जदि रेगुलर जने खाइला सेतिबे तमाखु ठारु दूरे रहिबा दरकार आउ कैंसर रो प्रमुख कारण होची तमाखु सेवन
0: राज्यर विभिन्न स्थान में कालबैशाखी प्रभाव जारी रही आसंता दुई तीन दिन पर्यंत कालबैशाखी प्रभाव लागि रहिबो और तापमात्रा 3 रु 4 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइबो बोली पाणिपाग विभाग पक्षरु अनुमान करा जायछि। मुख्य संवाद पुनि थरे कृषि अर्थनीति

0: ಪವನ ಸಂಚಲ ಧಾರ ಹಂಚಿ ಮುನ್ನಾಡು ನಯಾರ ಮಸ್ತ ಪವನ ಸಂಚಲ ಧಾರ.
1: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली. दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी.
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को.
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी. 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप.
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम.
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग. हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन 3 बजे.
4: कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है अनोखा प्यार, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हैं जिया सरहदी और संगीत अनिल विश्वास का.

आशा भोसले की आवाज में फिल्म जासूस का गीत सुनिए। गीत को आनंद बख्शी लिखा है और धुन बनाई है अनिल बिस्वास ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जलती निशानी से लिया है। गीत को कमर जलालाबादी ने लिखा है और धुन है अनिल विश्वास की।

0: aquí.
1: Mancha Gui.
0: मनचाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
2: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
3: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
2: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के दूसरे व्यक्तियों के अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
3: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
4: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
2: कार्यक्रम मन चाहेगी,
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने आप सबकी ख्वाहिश पर चुना है। फिल्म का नाम है बॉबी, आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं आप सभी। डोंगरगढ़ गांव, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। और ये खत आया है कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानू, उबैद, रजीह, जुनैद, अलीना, आयत, मुआज और मंसूरी का। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं लोक सिटी उदयपुर यानी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से नरोत्तम गौड़ और उनके परिवार वाले। आइए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है,
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
5: पहले तुम,
6: पहले तुम,
5: पहले तुम,
6: पहले तुम,
5: पहले तुम,
6: तुम,
5: तुम,
6: तुम,
5: तुम,
6: तुम,
5: तुम,
6: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप कर निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मती भरे रुक न चल जाए।
5: अच्छा मैं कहती हूँ

फिल्म बॉबी का दो गाना अभी आपने लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह का आवाज सुना। अगला खत हमें मिला है उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर का। ये हैं डोंगरगांव जिला राजनांदगांव से, यानी बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। आप हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर आर्य, श्रीमती सविता बेबी, स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार का। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म मन मंदिर में, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मनचाही गीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की कनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। 2 जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी।

0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्म दिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम में अगला गीत सुन चाहते हैं। भोपाल से सुधीर, श्रीमती मालती, चंचल, नवनीत, पुविन, ईशी, गौरिक और उनके अन्य साथी, दतरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जविंद्र कुमार वर्मा। हम अपने सभी श्रोताओं से ये करवद अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ लिखें ताकि हमें कोई भी नाम या जगह का नाम पढ़ने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सही नाम हम पढ़ सकें। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब भी आप लिखेंगे तो अपनी हैंड राइटिंग में सुधार करके अपना नाम और अपना पता लिखेंगे। गाने के बोल, कलाकारों के नाम, जो भी आप लिखते हैं साफ और सुंदर हैंड राइटिंग में लिखें। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म भीगी पलके का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, MG हशमत की गीत रचना है। सुनते हैं ये गीत। जुगल किशोर और तिलक राज का संगीत है।

इस कार्यक्रम के आखिर में सुनना चाहते हैं आप सभी लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में, गीत रचना राजा मेहदी खान की है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सभी भाटापारा से मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत, विनय ठाकुर और इनके परिवार वाले, वहीं से इनके मित्र सुब्रत चौधरी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित इसी गीत को सुनना चाहते हैं। छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता और ये हैं सपना। संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मंदानी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: मन चाहे गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। नाट्य तरंग में आइए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। तो चलिए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा भाग।
1: क्यों डेजी, इस तरह उदास क्यों रही हो?
2: नहीं तो मैं कुछ सोच रही थी।
1: देखो डेजी, बहुत सोच विचार के बाद ही मैं इस त्याग के लिए तैयार हुआ था। अब भी अगर तुम इस तरह उदास बनी रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हें सुखी बनाने की मेरी कोशिश असफल रही है और इससे मुझे बहुत निराशा होगी। मुझे लगता है ये गार तुम्हें बड़ी वेदना
2: पड़ी। नहीं, बल्कि ये तुझे मुझे बहुत सांत्वना देता है।
1: डेजी, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। नए जीवन को सानंद स्वीकार करने पर जीवन का अर्थ मिलेगा। लो इधर देखो, देखो ना, हाँ मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ओ ठेसी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। अरे हाँ, मैं सोच रहा हूं दो हफ्ते की छुट्टी ले लूं। हम दोनों के लिए चेंज थोड़ा जरूरी है। हम लोग कुछ दिन ऊटी में आराम करेंगे, क्या कहती हो?
2: ऑपरेशन से पहले बेनी ने भी ऊटी जाने का प्रोग्राम बनाया।
1: नो नो नो नो, तब ऊटी नहीं जाएंगे। वहां पहुंचकर तुम्हें तरह तरह की दुखद यादें तंग करेंगी। लेट्स गो समवेयर एल्स। मैसूर या बेंगलोर का प्रोग्राम बनाया तो क्या रहेगा?
2: मेरा मन कहीं नहीं लगता। आप कोई प्रोग्राम नहीं बनाए।
1: और डेजी, यही तो मौका है जब हम कुछ घूम फिर सकते हैं। अब बाद में जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो गस्ती से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कहूं, अगले साल तो हमारे एक बच्चा भी होना चाहिए। प्यारा प्यारा दुलारा सा नन्ना मुन्ना।
2: प्यारा प्यारा सा दुलारा सा नन्ना।
1: देसी।
3: अच्छा उड़ दी देना।
1: अरे अरे सुनो तो।
3: नहीं सुनती।
1: ओफो, अरे बात तो सुनो
3: बेनी। देखो देखो, तुम्हारी शरारत बहुत बढ़ रही है।
1: ओ डेजी, डेजी माय लव। डेजी, हमारे बच्चा नहीं होगा क्या?
2: ईश्वर की कृपा हुई तो।
1: सुनो, मुझे तो नन्ना सा प्यारा सा तुम्हारे जैसा।
2: क्यों, तुम्हारे जैसा क्यों नहीं?
1: अच्छा बाबा, हम दोनों जैसा।

0: डेजी, तुम इस तरह खामोश और परेशान से क्यों?
1: नहीं कुछ नहीं।
0: अब चलो सिनेमा चले।
1: नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं, मन बहुत अशांत।
0: अरे मन में शांति लाने के लिए तो कह रहा हूं। कम ऑन डेजी, दूसरी साड़ी पहन लो, सिनेमा चलेंगे, जल्दी करो। लो ये सब पहन लो।
1: ये साड़ी
0: डेजी, व्हाट इज दिस? क्या है?
1: बेरी की प्रेजेंट की
0: ओह डेजी माय गॉड।

0: मैं लॉरेंस को निराश नहीं करना चाहती थी। मुझ निराश्रित विधवा को डॉक्टर लॉरेंस ने सहर्ष स्वीकार किया था। नए जीवन और नई परिस्थितियों में मैं घुल मिल गई और इस तरह एक साल आनंद पूर्वक बीत गया। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शिशु जन्म के बाद परिवार की शांति में विघ्न पड़ गया।
1: कैसे?

0: मतलब निकाल लो।
1: अपने अबोध बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार।
0: अपने बच्चे से मारफुट। तुम्हारे बच्चे से कहो तो ज्यादा ठीक रहेगा।
1: क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है।
0: दूसरों की नजरों में कानून के अनुसार भी है, लेकिन आत्मीयता की दृष्टि से नहीं है। मैं इतने क्रूर बच्चे का पिता होने का भार नहीं ढो सकता।
1: दुनिया को एक सुंदर सा बच्चा दिखाना होगा। इस कंडीशन पर मैं मां नहीं बनी हूं। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना होगा, उसे प्यार करना होगा।
0: मैं ऐसे बच्चों प्यार नहीं कर सकता।
1: लेकिन मैं मां हूं, मैं प्यार किए बिना नहीं रह सकती।
0: अब छोड़ो, डॉक्टर रामदास आ रहे हैं, उनके सामने झगड़ा बंद करो। उन्हें कम से कम ऐसा लेना चाहिए जैसे हम बड़े प्रेम से रहते हैं। हेलो डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर रामदास।
2: भाई वाह वाह वाह, क्या रेडीमेड हंसी के साथ खड़े हैं आप।
0: रेडीमेड हंसी? अरे भाई, हमने तो आपको गेट पे देख लिया था। क्यों ने जी?
1: जी
2: भाई, बहुत दिनों से इधर आने की सोच रहा था मैं।
1: चलिए, कम से कम आज तो आया। आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे, सोच भी नहीं सकती थी।
2: ऐसा क्यों कह रही हो डेजी? प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। भाई जैसे ही फुर्सत मिली मैं चला आया। अरे हाँ, ये लो बच्चे के लिए कुछ खिलौने।
0: अरे भाई, वो तो अभी खेलने लायक भी नहीं हुआ है।
2: ओ डॉक्टर, वो खुद नहीं खेल पाएगा, लेकिन दूसरों को तो खेलते हुए देख लेगा। ये तो पालने पर लटकाए भी जा सकते हैं। अरे चाबी वर्ग छोड़ दो, ये सब खिलौने लट्टू की तरह एक साथ घूमने लगेंगे।
1: एक साथ घूमने लगेंगे?
2: हाँ,
1: आपने बहुत सोच समझ कर खिलौने छांटोगे।
2: अरे हाँ डेजी, बच्चा कहाँ है?
1: वो
2: सो रहा है।
1: वो तो बहुत बीमार है, दो तीन दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ है, हंसना खेलना सब बंद है।
0: अरे भाई, बुखार चढ़ने पर तो हंसना खेलना बंद हो ही जाता है, क्यों डॉक्टर?
2: चलिए एक बार मैं भी देख लूँ। ओ, लगता है सोया हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस, बुखार अभी भी है।
0: Well, that doesn't matter, doctor. Slight fever only. मैंने दवा दे दी है वैसे।
2: अच्छा, मैं चलता हूँ। एक जरूरी काम है। चलो डेजी।
0: ओके।
1: अच्छा डॉक्टर।
0: बाय डॉक्टर। बाय बाय।
1: ये अभिनय और कितने दिन चलेगा?
0: जब तक जरूरी होगा।
1: मुझसे अब और नहीं कहा जाता। कई दिनों से आप इस तरह का अभिनय करते आ रहे हैं, आखिर ये मतलब क्यों?
0: अपने लिए।
1: लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये।
0: होगा, ये मेरी इच्छा है और आज्ञा भी।
1: मेरी इच्छा को धूल मिलाने वाले आप मुझे आज्ञा दें?
0: तुम्हारी कौन सी इच्छा मैंने पूरी नहीं की डेजी?
1: आपसे कहा था जरा बच्चे की जांच कर लो।
0: जांच करके अब कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा।
1: ये क्यों नहीं कहते कि आप जांच करना ही नहीं चाहते? कैसी विडंबना ये, अपने बच्चे को कुरूप देखकर एक डॉक्टर पिता उससे दूर खड़े रहना चाहता है।
0: तुम मेरी निराशा नहीं समझ सकते।
1: डॉक्टर रामदास अभी आए थे, उन्होंने मेरे बच्चे को देखा था, लेकिन उन्होंने उसकी कुरूपता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।
0: हमारे सामने कुछ नहीं कहा, यही ना, समझदार आदमी है वो। लेकिन क्या ये बच्चे के सुंदर होने का सर्टिफिकेट है?
1: बंद भी करो ये सब। बाहरी चमक को सौंदर्य समझने वाले आप।
0: तुम शायद कुरूपता में सौंदर्य देख सकती हो डिजी, बेनी में भी तो तुमने सौंदर्य देखा।
1: बेनी को ना क्यों घसीट लाया?
0: मैं घसीट लाया? ये कहो, बेनी को तुमने हर जगह बसा रखा है, अपने मन विचारों में, इस कमरे में, इस घर के कोने कोने में बेनी बसा हुआ है। और शादी के बाद तुमने बेनी की कब्र बनाने की इच्छा की थी।
1: क्या मैंने कोई गलत बात की थी? इसमें बिगड़ने की क्या बात है?
0: तुम्हारा निकट संबंध किससे ज्यादा है, मरे बेनी साथ या टीवी डॉक्टर लॉरेंस के साथ?
1: क्या सवाल कर रहे हो तुम?
0: तुमने मन में कौन बसा रखा है, मैं या बेनी?
1: क्या हो गया?
0: तुम उससे ज्यादा बेनी की फोटो तैयार करती हो, तुम इसकी पूजा करती हो, लेकिन लेकिन अब ये सब नहीं होगा। ये फोटो अब यहां नहीं।

0: डेजी, एक चीज भूल गया था मैं, ये डायरी। अरे लॉरेंस कहाँ है?
1: अभी बाहर गए हैं डॉक्टर। डॉक्टर, आपको मेरी एक शंका दूर करनी है।
0: कैसी शंका?
1: मेरा बच्चा कुरूप क्यों है? क्या बेनी को सदा याद करते रहने से ऐसा होगा डॉक्टर?
0: डेजी, तुम्हारे सवाल बड़ा विचित्र है।
1: लेकिन ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर?
0: नहीं,
1: मुझे तो लगता है लॉरेंस को ऐसी कुछ शंका है।
0: लॉरेंस को? नो नो नेवर, वो ऐसी कोई शंका नहीं कर सकता।
1: तब ये हुआ कैसे डॉक्टर?
0: डेजी, इसके कई कारण हो सकते हैं। पति या पत्नी के परिवार में पहले किसी का रंग काला रहा हो, या फिर कोई बहुत कुरूप रहा हो, तो ये संभव हो सकता है कि उसकी संतान में या संतानों की संतान में इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए।
1: आप ये बात लॉरेंस को समझा सकेंगे डॉक्टर?
0: लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है डेजी? क्या हुआ? बोलो डेजी, बोलो क्या हुआ?
1: इस बच्चे के जन्म के बाद से ही लॉरेंस मुझसे और इस बच्चे से नफरत करने लगे।
0: क्या?
1: हाँ डॉक्टर, आजकल मैं एक अग्नि चक्र में से निकल रही हूँ। पहले जब आप आए तब हम केवल अभिनय कर रहे थे।
0: क्या?
1: लेकिन वास्तव में बात डॉक्टर, डॉक्टर आदेश पर एक कृपा कीजिए। प्लीज डॉक्टर, मेरे बच्चे को एग्जाम कर लीजिए।
0: मैं?
1: डॉक्टर, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर, उसकी हालत नहीं है। प्लीज डॉक्टर उसे देख लीजिए डॉक्टर।
0: नहीं नहीं डेजी, नहीं, ये ठीक नहीं है। बच्चा डॉक्टर लॉरेंस के ट्रीटमेंट में है। मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता। आई एम सॉरी।
1: प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। देखिए ये खिलौने आपके बच्चे के लिए लाए हैं ना, उस बजा लीजिए डॉक्टर प्लीज।
0: नहीं डेजी, नहीं डेजी, ये ठीक नहीं है।
1: प्लीज डॉक्टर।
0: अच्छा चलो, मैं बच्चे को देख लेगा।
1: डॉक्टर रामदास बच्चे को एग्जामिन कर ही रहे थे कि बीच में लॉरेंस लौट आए। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गए। उन्होंने डॉक्टर रामदास का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन फाड़ डाला और रामदास को बड़ी निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल दिया। और तब मैं अपनी वेदना नहीं छिपा सकी। नतीजा ये हुआ, लॉरेंस ने कस के एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। और कुछ बाद मेरा कुरूप बच्चा दुनिया से चल बसा। मेरे दुख की कोई सीमा न रही। बच्चे के खाली पालने को देखकर मैं रोती। एक दिन मैंने बेनी के गिटार को बच्चा मानकर पालने पर रख दिया और लोरी गाने लगी। तभी लॉरेंस आ धमकी और गिटार को निर्दयता जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। बोले ये बिनी का प्रेत है।
2: बिनी का प्रेत?
1: हाँ, मैं चीख उठी। थोड़ी देर बाद जब मैंने घर से बाहर निकल जाना चाहा तो देखा सामने से डॉक्टर रामदास आ रहे हैं। मैं खामोश एक तरफ खड़ी हो गई।

0: आपको जिसने अभिनय ही अपना स्वभाव बना लिया है, अगर ऐसा लगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं।
1: समझा नहीं?
0: कोई कुछ समझ न सके, इसी तो आपकी जीत है। बिना किसी स्टेज फाइट के तुमने जीवन मंच पर कितना बढ़िया अभिनय की लॉरेंस।
1: What do you mean, डॉक्टर अमदास, आप क्या कह रहे हैं?
0: बेनी को आपने ही मारा था ना
1: डॉक्टर?
0: कांपो नहीं, मेरे सच बोले पर चौंक क्यों पड़े तुम?
1: नहीं नहीं पता नहीं आप कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं।
0: डॉक्टर लॉरेंस, काश इस समय तुम अपना चेहरा देख सकते। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद ये बात अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस रहस्य की सूचना मुझे तुम्हारे असिस्टेंट डॉक्टर आशीष ने दी।
1: स्टॉप दिस नॉनसेंस आई सेड डॉक्टर।
0: नो, इट इज नॉट नॉनसेंस बट ट्रुथ, ए बर्निंग ट्रुथ।
1: डॉक्टर रामदास, आधार रहित आरोपों से लोगों को बदनाम मत कीजिए। क्या क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं मैंने उसे जहर देकर मार डाला?
0: नहीं, नहीं, तुम इतने बेवकूफ नहीं कि जहर देकर मार डालो। ऐसे ऑपरेशन के बाद तुमने रोगी को वो इंजेक्शन दिया जो उसे कभी नहीं देना चाहिए था। क्यों, ये सच है ना? दो घंटे के बाद ही पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी। ड्यूटी नर्स दौड़ कर बुलाने के लिए गई, लेकिन उस वक्त तक आप भाग जा चुके थे। ये सब आपने जानबूझ कर ही किया। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त बेनी मर चुका था।
1: डॉक्टर डॉक्टर that was mere death, एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी।
0: नो, नॉट मेयर डेथ, इट वॉज ए क्लियर मर्डर।
1: डॉक्टर नो डॉक्टर,
0: तुमने एक हत्या की है डॉक्टर लॉरेंस, तुमने एक हत्या की है। और सारी जानकारी हासिल करने के बाद मैं ये बात कह रहा हूं, डिजी के सौंदर्य पर मोहित होकर तुमने बेनी की हत्या की।
1: नो नो, क्यों डॉक्टर,
0: सच है ना? सच है ना? तुमने सब यही कहा कि अपने घनिष्ठ मित्र के स्नेह से उड़ होने के लिए तुमने उसकी विधवा से विवाह कर लिया। क्यों बोलो? अरे तुम पसीने में डूब क्यों गए हो? इतना हाफ क्यों गए हो? क्यों डॉक्टर लॉरेंस, ये सब अक्षर अक्षर सच है ना?
1: डॉक्टर डॉक्टर
0: लॉरेंस, मैं कहता हूं साफ साफ कह दो, ये सच है ना? ये सच है ना?
1: सच है, सच है डॉक्टर, लेकिन उस गलती हो गई डॉक्टर, गलती हो गई।
0: बेचारा बेनी, मैं बातें करने इसलिए ऐसे पर आया हूं जब तुम्हारी तुम्हारी पत्नी घर नहीं है। डॉक्टर लॉरेंस, जो कुछ हो गया सो हो गया। भविष्य एक अच्छे पति होकर शराफत के साथ जीवन बिताओ, समझे? इस सेंसिटिव लड़की को और ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाओ।
1: डॉक्टर, मुझसे गलती होगी डॉक्टर, लेकिन प्लीज डॉक्टर, प्लीज ये सब बातें आप किसी और से न कहिएगा।
0: नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा
1: डॉक्टर,
0: क्योंकि तक कहने में ही तुम्हारा भला है। अच्छा डॉक्टर लॉरेंस, मैं अब चलता हूं।
1: मैंने क्या कर डाला है? मैं क्या भूल गया कि इंसान जो करता है उसकी उसकी कीमत एक न एक दिन से चुकानी होती है। अरे अरे डेजी, अरे इतनी जल्दी कैसे लौट आई?
2: तुम्हारी आवाज ने मेरे पांव रोक दिए, इसलिए जा नहीं सकी।
1: डेजी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
2: अरे इतनी सी देर में क्या हो गया?
1: तुम्हारे जाने के बाद

0: मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी है।
1: हाँ हाँ मैं अभी आती हूँ।
0: हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे लगने पर हम दोनों एक साथ ही आएंगे। डेजी, वो जो बेनी का फोटो है ना, हाँ, उसको फ्रेम करा के यहां रखेंगे। मुझे बहुत दुख है मैंने उसका किताब तोड़ दिया। मैं नया किताब ले आऊंगा डेजी। हाँ, उस गिटार को हम बहुत जतन से रखेंगे। और सुनो, वो तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, वही वाली। हाँ, आज ही पहने। हाँ, वो डेजी, हम ऊटी का प्रोग्राम भी बनाएंगे। हम ऊटी जरूर चलेंगे, चलेंगे ना?
1: हाँ हाँ जरूर चलेंगे। लो कॉफी पियो। डॉक्टर साहब,
0: डेजी,
1: तुमने मेरे प्राण प्रिय बेनी को मार डाला ना?
0: ये क्या कह रही हो तुम डेजी?
1: मेरे रूप और सौंदर्य ने तुम्हें ये घृणित काम करने की प्रेरणा दी थी?
0: नहीं, डेजी,
1: तुमने अपने सहपाठी और अपने परम की जान ले ली?
0: नहीं नहीं नहीं, डेजी सुनो तो।
1: सुनो डॉक्टर, ये घृणित सत्य जान लेने के बाद अब हम साथ नहीं रहे।
0: डेजी, सच नहीं है, मैं कहता हूँ डेजी।
1: बोलने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर रामदास का एक एक शब्द मैंने सुन लिया है।
0: ओह माय गॉड,
1: मैं जा रही थी लेकिन डॉक्टर रामदास को इधर आते देख एक कोने में खड़ी हो गई थी।
0: नो,
1: मेरे लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपसे विदा ले रही हूँ।
0: विदा?
1: मैंने अभी जो कॉफी पी है ना, उसमें जहर खुला हुआ।
0: डेजी, डेजी,
1: मैं कुछ ही पल की मेहमान हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई हो उनके लिए मुझे माफ कर देना। अरे, अरे, ये आपको क्या रहा है? ये आप इस तरह क्यों कर रहे हैं?
0: डेजी, मेरी नसें टूट रही है। डेजी, तुमने मुझसे प्रतिशोध लिया। डेजी,
1: नहीं लॉरेंस, नहीं, विश्वास कर, मैंने प्रतिशोध नहीं लिया है। ये क्या हुआ? ये कॉफी की कैसे नहीं बदल दी? ओह नो, ये क्या हो गया? ये पहली कॉफी मेरी थी, तुमने वो कप कैसे ले लिया? और लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, ये कैसे हो गया? करो करो, डॉक्टर बुला के लाओ। मैं भागी भागी हॉस्पिटल गई, डॉक्टर आए, लेकिन तब तक लॉरेंस खत्म हो चुके थे। मैं मूर्ति बनी खड़ी रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये गलती कैसे हो गई। मैंने तो दोनों प्याले अलग अलग और दूर रखे थे।

0: नहीं निकल पाऊंगी। आप क्या सोचने लगे?
1: एक छोटी सी बात।
0: क्या?
1: यही संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते?

सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक थे भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की,
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने लगा रहा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिन गीतों में धार्मिकता भी है और

0: तो कभी छा।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नई जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिली मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। ये पंक्तियाँ लिखने वाले कवि और गीतकार थे प्रदीप जी। जी हाँ, वही प्रदीप जिन्होंने लिखा दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिनकी गर्म से निकला ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, वही कवि प्रदीप, यानी शब्दों की आकाश गंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, यानी जब जब हम गंगा जमुनी तहजीब पर, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तब हमें महान कवि प्रदीप जी को, उनकी रचना को याद करना ही होगा। और आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को ही याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी है गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया
2: जी,
3: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है, आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं
2: जी,
3: है ना। मुझे लगता है पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी जिसने विविध भारती नहीं सुना होगा तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है
2: जी।
3: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका।
2: जी बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्रकवि प्रदीप जी के बारे में
3: जी।
2: सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसी हैं।
3: मैं तो अच्छी हूँ
2: मितुल जी। आप राष्ट्रकवि गीतकार प्रदीप जी की सुपुत्री हैं और आप अपने पिता जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था, उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था और आपके घर परिवार में कौन कौन थे।
3: सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो लिखने की शुरुआत की, मतलब लिखना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे।
2: अच्छा।
3: तो इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हिंदी भाषा के, मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी। और वो कवि थे
2: जी,
3: कवि सम्मेलनों में जाया करते थे विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था।
2: अच्छा जी।
3: और ज्यादातर लेखक हैं, कवि हैं, वो अपना उपनाम रखते हैं। तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप।
2: अच्छा।
3: लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे, और तब तो मुंबई नहीं बम्बई थी
2: जी, बिल्कुल।
3: और 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए, ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति डेस्टिनी, तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई उनकी नसीब। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से

0: उन्होंने जाकर के हिमांशु राय को बोला कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने और हो सकता है उनकी कविता हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में
1: जी।
0: वहां पर देवी करानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहां पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूं भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा सुनाइए तो सही। फिर सुनाया अपनी शैली में, उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई और वो लोग बहुत इंप्रेस हो गए। और वो इंप्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ।
1: अच्छा,
0: तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए, हिमांशु रॉय ने कहा हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए। प्रदीप जी ने कहा मैं कोई तुक्कड़ कवि नहीं हूं, मैं तो कवि हूं और कवि फिल्मों में कैसे लिख सकता है। बोलते कोशिश तो करिए हमारे लिए, एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो एक राइटिंग है, तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार बन गए।
1: कौन से सन की बात है और किस फिल्म के लिए उन्होंने लिया?
0: कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूँ मैं
1: जी,
0: कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए।
1: बिल्कुल,
0: उनका जो उपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप, तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना। और तो कवि प्रदीप कैसे हुए? उस जमाने में उसी दौरान एक और नाम था प्रदीप कुमार
1: जी, एक्टर
0: एक्टर। तो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कंफ्यूजन है। फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि लगा दो। तो कवि प्रदीप अलग हो गए
1: और
0: प्रदीप कुमार अलग हो गए। तो ये आपके सवाल का जवाब है।
1: तो मितुल जी आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए, आपकी पसंद का?
0: एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज रे जलते है ना।
1: वाह क्या बात है,
0: हेमंत कुमार,
1: हेमंत कुमार की आवाज में।
0: ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप एक कैसा गोल्डन वो है साथ में,
1: त्रिकोणीय व्यक्तित्व।
0: हाँ
1: जी बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: मित्र जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कवि प्रदीप तो बने, लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन कौन सदस्य थे, और जो मित्र नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था?
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था।
0: अच्छा।
1: दोनों बहनों के बीच में, तो मैं छोटी और दीदी ज्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती थी।
0: जी।
1: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा, तो इसीलिए हम काफी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे
0: जी।
1: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति
0: और सिद्धांतवादी,
1: लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है, आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे तो कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया, अवार्ड लेना ही बंद कर दिया।
0: अच्छा।
1: हाँ। तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग मेन, मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती, तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था, तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि ये इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे।
0: अच्छा जी।
1: लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें,
0: इतनी फ्रीडम थी।
1: फ्रीडम, हाँ। तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए जिंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना कि दिमाग से भी काफी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा
0: नहीं थी जी।
1: मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने 7 फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
0: अच्छा जी। और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा, कहा कि मैं आग हूँ और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूंगा, तो इस तरह की बातें भी कल परिवार में हुई होगी।
1: बहुत बहुत बहुत सारी बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी वो भी काफी फॉरवर्ड विचारधारा के थे, और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं, तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम

0: इनके लिए हम लोग सोचे कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही
1: जी
0: हूँ, आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले। तो
1: अच्छा
0: मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे, तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर
1: जी
0: है
1: वो गर्म
0: मैं
1: है।
0: गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी? दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी ही नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
1: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
0: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूंगा।
1: अच्छा।
0: हाँ मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। बोलते हैं मैं कोई इसमें ज्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम सादा विवाह होगा, आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं कुछ
1: अच्छा
0: लेना नहीं चाहता हूँ,
1: जी
0: जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफकोर्स दो तीन साड़ियां तो दी
1: हाँ
0: होगी,
1: हाँ
0: लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे बापू।
1: पिता जी
0: अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या? उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ सब। तो
1: अच्छा
0: बोले मैं नहीं चाहता हूं कि यहां पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग, और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूं।
1: अरे
0: तो
1: हाँ
0: उन्होंने बोल दिया वहां पर मैं शादी कराऊं, हम लोग को कोई यहां पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को
1: जी
0: लेके।
1: जी
0: तो वहां से कोई नहीं आया। वहां मेरी दादी मेरे दादा परेशान, उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं,
1: जी
0: ना तो कोई ऐसे टेलीफोन से, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहां से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा अरे आप आइए आइए, उनको पता था कि ये, उनका फोटो देखा था, अरे नारायण जी आप आए हैं आइए। मुझे माफ कीजिए लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है।
1: जी जी
0: तो दादा और मेरे नाना दोनों

0: बनकर रही, उस
1: पानी बन के रही।
0: जी
1: हाँ एक्चुअली वो भी आग थी लेकिन वो पानी बन के रही।
0: ये सबसे बड़ी बात है जी।
1: क्योंकि मेरी माँ को अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी और आप कहीं कुछ होगा तो आप उसको गले से भी पकड़ेंगी। मतलब
0: उनकी शिक्षा दिखा भी इस माहौल में की गई, नाना नानी के द्वारा।
1: हाँ ऐसे ही उनको सिखाया गया कि कोई भी चीज में आपको पीछे नहीं हटना है। तो वो भी उनकी तासीर भी आग वाली थी लेकिन जब बापू से शादी हुई तो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया
0: जी।

0: अब हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रही, उनके बारे में आपके क्या विचार बने?
1: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, जैसे मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना, ये नहीं पता चलता दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं, लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे मितुल गाना गाई, मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं लोग। फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था या उनकी क्या हाइट थी और समाज में वो क्या थे, वो सब पता चलने लगा
0: जी।
1: और खैर वो तो बड़े इंसान थे, लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया।
0: घर में एक आम पिता की
1: आम पिता की तरह
0: जी।
1: मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के

0: साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो सब मेरी माँ करती थी। तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से, तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा, कोई स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो लिखने की शक्ति
1: बिल्कुल
0: वो और बड़ी मेरी माँ के कारण,
1: बहुत बड़ी बात। और तभी वो राष्ट्रकवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर दिखाया। तो मितुल जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
0: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम इंदौर वहां पर हुआ मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई मतलब मेरे ताऊजी वो इलाहाबाद में रहते थे और वहां पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू उसको भेजा इलाहाबाद, मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं

0: इलाहाबाद में ही काफी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती थी जहां पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला, कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है, तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया। पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है, ये कोई
1: मतलब
0: जानबूझ नहीं
1: स्वप्रेरित
0: हुआ।
1: हुए क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था,
0: हाँ
1: तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है
0: हाँ
1: वो आम जन तक पहुंचना चाहिए।
0: हाँ और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी महाहत्या हुई
1: जी
0: इलाहाबाद में, तब भी प्रदीप जी वहीं पर थे। हाँ
1: अच्छा
0: तो ये सब चीजें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झकझोर दिया।
1: हाँ,
0: और
1: तब
0: फिर
1: तक वो कवि प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में।
0: नहीं, वो तो, ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी की। वो तो अपना पढ़ाई लिखाई खत्म होके वो जब ग्रेजुएट हो गए तब वो आए थे
1: जी
0: मुंबई,
1: जी हाँ, तो आप बता रही थी उसी दौरान।
0: चंद्रशेखर आजाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई। और वो काफी, मतलब वो आंदोलन काफी तेज हो गया
1: उग्र
0: था उस
1: रूप में।
0: वक्त,
1: हाँ जी
0: तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू।
1: जी क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी, आप हमें अगर सुनाना चाहें, या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो इस कविता ने।
0: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई
1: जी
0: थी,
1: जी
0: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल।
0: और काफी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूं। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही एक
1: जी
0: कविता
1: जी
0: लिखी
1: बिल्कुल
0: है, वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था,
1: बहुत
0: जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीन सा पूर्ण कर गया अनंत के शरण। वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लय के तले जिया था।
1: क्या बात है, बहुत खूब।
0: एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है, लेकिन
1: जी जी
0: यही
1: जी
0: कविता है जो उन्होंने
1: लिखी
0: उसी वक्त लिखी,
1: उसी दौरान उनके भीतर ये अंकुर पैदा हुआ
0: अंकुर
1: और
0: पैदा
1: वहां
0: हुआ।
1: से वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए।
0: हाँ
1: जी तो मितुल जी, आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं, आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो।
0: मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये सुनाएं, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, आज
1: जी
0: हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है।
1: बिल्कुल, हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: मितुल जी, गीत को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई, लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनाया जाए और रील को वापस रिवाइंड किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इस गीत से बहुत क्रोधित हो गई।
1: अब देखिए, उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में लेकिन जो बातें सुनी, और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी
0: जी।
1: जैसे हम लोग कभी बैठे, हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए, दोस्त आए बापू के, तो बातें होती थी, तो तब मैंने ये सब सुना था। और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि ये कवि को पकड़ो, इसको गीतकार को पकड़ो, इसने हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा खतरनाक सा गीत लिखा है। तो उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे घर के लोग सब परेशान, माँ परेशान, दूसरे सब रिश्तेदार सब परेशान कि अब क्या होगा, इनको पकड़ के ले जाएंगे। उनको अंडरग्राउंड कर दिया, अंडरग्राउंड मतलब कहीं
0: भूमिगत।
1: तो भूमिगत हो गए तो ठीक है, ये लोग तो ढूंढते रहते थे कि कहाँ है, जब हाथ में आएंगे तो पकड़ लेंगे। उसी दौरान एक अपने जो भारतीय एक ऑफिसर थे, वो वहां पर ब्रिटिशरों के साथ काम करते थे
0: जी।
1: उन्होंने कहा कि आप लोग ये इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे खिलाफ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहां के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, तो हमको ही बोल रहे ना कि निकलो यहां से। नहीं नहीं देखिए, ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है तो वो बात सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
0: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ी गई थी, कहते हैं शब्दों की जंग थी,
1: शब्दों की जंग। और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी

0: स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, वो उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, तो लोग समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी। सबसे बड़ी बात,
0: सही बात है
1: ना। और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो?
0: बहुत ज्यादा। गांधी जी उनके हीरो थे, तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा तो वो आप देखिए एक बच्चों के भाषा में लिखा है।
1: बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: तो वो बच्चों की भाषा है लेकिन वो भाषा इतनी सरल है। आप सुनिए तो आखिरी में आप जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है इस गाने के सिवाय वो
1: कोई
0: गाना नहीं होती।
1: जी बजता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में, गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज्यादा असर था। और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुंचना संभव हुआ। तो आपकी पसंद का एक गीत और सुन लीजिए, आप कहें तो ये गीत सुना जाए।
0: यही साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।

0: मित्र जी, हमारे भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना। लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूं। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ, और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी, या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ?
1: ऐसा है कि मेरे बापू बड़नगर में, उनकी पैदाइश बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर
0: जी,
1: और वहां पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहां के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी में अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहां जाते रहते थे, वहां खेत खलिहान थे। तो वहां पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं, भील जाति के लोग। तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू, भी उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो वहाँ क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना, पानी भरना, फिर अपने चक्की चलाना, गेहूं डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गांव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी, और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते रहते थे। तो वो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत, वहां पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे
0: जी।
1: तो ये भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी। रामू वहां जाके बैठे, उनके साथ बैठ के गाए, तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना जो खनक है
0: जी,
1: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
0: नहीं है,
1: सारे गामा नहीं है,
0: कॉपी की भी नहीं है,
1: कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है, ठीक है। तो ये जो

0: मित्र जी, हमारे भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना। लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूँ। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ?
1: ऐसा है कि मेरे बापू बड़नगर में, उनकी पैदाइश बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर
0: जी,
1: और वहां पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहां के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी में अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहां जाते रहते थे, वहां खेत खलिहान थे। तो वहां पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं, भील जाति के लोग, तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू भी, उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी।
0: अच्छा। हाँ,
1: तो वहाँ क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना, पानी भरना, फिर अपने चक्की चलाना, गेहूं डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गांव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी, और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते रहते थे। तो वो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत, वहां पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे
0: जी।
1: तो ये भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी, रामू वहां जाके बैठे, उनके साथ बैठ के गाए। तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना, जो खनक है
0: जी,
1: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
0: नहीं है,
1: सारे गामा नहीं है,
0: कॉपी की हुई नहीं है,
1: कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है। ठीक है, तो ये जो आप
0: जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना, समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि बिरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं है जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर होने के लिए नहीं लिखा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे,
1: एकदम सही कहा,
0: दिल से लिखा,
1: दिल से जो लिखा दिल से लिखा।
0: और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई हमें सुनने को मिलती है, और

0: की शांति देगा।
1: जी
0: जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो, या कहीं पर ऐसा हो माहौल के जहां हम लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब अगर हम ये सुने कि कोई लाख करे चतुराई,
1: चतुराई
0: कर्म का लेख मिलना
1: लेना
0: रे
1: रे
0: भाई,
1: भाई।
0: जरा समझो इसकी सच्चाई। गाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है, कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या हैं,
1: मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आता
0: जीवन
1: है और अपने
0: दर्शन
1: मन को हम समझा लेते हैं
0: समझा
1: कि
0: लेते
1: अच्छा
0: हैं।
1: इस गीत में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मीठे नारे भाई, तो
0: हाँ,
1: हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों में ये
0: कर्मों
1: सब
0: में
1: लिखा
0: निकल।
1: है तो।
0: और दूसरा गीत है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले
1: जी
0: तेरे दुख दूर करेंगे हम, तो हमको प्रेरित करते हैं कि आप दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो आपका भी जो दुख है वो भगवान ले लेंगे, तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूँ, कि उनके हर एक गीत को हमको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
3: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
2: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
3: या न्याय बंधु पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
2: अब दोनों एक ही ऐप पर। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତି ଗୀତଟି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କ୍ଷମା ସାଗର ଭଜନ ଆଲବମ୍ରୁ। ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି କୁମାର ବାପି। ଅଲେଖ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରଚନା ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ।

0: बेटा शौर्या, ये तुम्हारा रूम है जो पहले मेरा स्टडी था और उसे पहले तुम्हारे दादाजी का।
1: वाओ पापा, ये घर कितना पुराना है।
0: बेटा, इस घर ने 3 पीढ़ियां देखी है
1: और अब तक इतना मजबूत खड़ा है।
2: कुछ चीजें वक्त के साथ और मजबूत होती है, जैसे आदि और चेटनाट सीमेंट का सुपर ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटनाट सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंद

0: आम राज्य रे एबे स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर कार्यक्रम आरंभ हो जाई छि। एथिपई 30 मई 2026 रु 28 जून 2026 पर्यंत बूथ स्तरीय अधिकारी माने प्रत्येक घर को घर जाई प्रति निर्वाचकंकु दुईटी परिगणना फॉर्म देबे। फॉर्म गुडी को voters.eci.gov.in वेबसाइट रु मध्य डाउनलोड करि परिबे। फॉर्म दुईटी पूरण करबा परे एहा को बीएलंक निकट दाखल करंतु एवं तांको थारु प्राप्ति स्वीकार ग्रहण करंतु। अधिक सूचना पई वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 को कॉल करंतु किंबा वोटर सर्विस पोर्टल किंबा ईसीआई नेट ऐप रे बुके कॉल विथ बीएलओ सुविधा रा उपयोग करंतु। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसा द्वारा जनहित रे जारी
1: कार्यक्रम रा शेष गीत टा संसनपा परम ब्रह्म एल्बम रो गीत को गाइछंती अनुराधा पडवाल संगीत देइछंती सरोज नंदा।

0: अरे मिस्टर अय्यर, आपका घर तो 1970 से बना है ना, आज भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है?
1: सिंपल है, अब भी भरोसा था और आज भी है, 89 सीमेंट पर।
2: मजबूती जो सालों नहीं पीढ़ियों तक चले, चेटिनाड सीमेंट का सुपर ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
4: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
3: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
4: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
3: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: प्रधानमंत्री सूर्य घर मागणा बिजली योजना, विद्युत बिल ह्रास करिबा सहित परिवेश को मध्य सुरक्षित करिपारिबे। एहा सहित उभय केन्द्र और राज्य सरकार को तरफ 138,000 टंका पर्यंत सब्सिडी पाइबे। आज ही पीएम सूर्य घर योजना पाई आवेदन करंतु, निज छातरे सौर पैनल लगांतु।
6: अच्छा दासबाबू, आपण घरटा 1970 तैयारी थिला राइट, हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि?
7: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सही पाई मु सेतेबेले पूर्ण विश्वास रखीतली एवं आजि मध्य चेटिनाड सीमेंट उपरे
8: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरं पीढ़ी पाई रही था। चेटिनाड सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
4: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
3: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
4: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
3: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
9: आम राज्य रे एबे स्वतंत्र सघन संशोधन SIR कार्यक्रम आरंभ होई जायछि। एथिपई 30 मई 2026 रु 28 जून 2026 पर्यंत बूथ स्तरीय अधिकारी माने प्रत्येक घर को घर जाई प्रति निर्वाचकंकु दुईटी परिगणना फॉर्म देबे। फॉर्म गुडीकु voters.eci.gov.in वेबसाइट रु मध्य डाउनलोड कर परिबे। फॉर्म दुईटी पूरण करबा परे एहाकु बीएनको निकटरे दाखल करंतु एवं तांकठारु प्राप्ति

0: संस्कृति मूल्यबोध एवं परंपरार एकनिष्ठ प्रवक्ता आकाशवाणी।
1: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
2: गांव सहर जाए सबु स्थान रे
1: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंग पाई
2: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
1: केवल आकाशवाणी।

0: ରଚିତ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସର 48ତମ ଭାଗ।
1: ଏପିସୋଡ 48 48।

भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतार की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास हो रहा है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश करके देवताओं को स्थापित करते हैं, धर्म शास्त्रों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। हर एक अवतार जिस कारण होता है, वो कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हेतु अनेक हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई नहीं जान सकता। शिवजी ने पार्वती को श्रीहरि के दो द्वारपालों जय और विजय की कथा सुनाई, जो सनकादि ब्राह्मण के शाप के कारण हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्ययाक्ष के रूप में मनुष्य योनि में पैदा हुए थे। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार हुआ तथा हिरण्ययाक्ष का वध प्रभु ने वराह का शरीर धारण करके किया, किंतु स्वयं प्रभु के द्वारा मारे जाने के बाद भी उनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि ब्राह्मण का शाप 3 जन्मों के लिए था। कालांतर में यही दोनों रावण तथा कुंभकर्ण नामक महाबली राक्षस हुए।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह ली हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर। डाउनलोड करें आज ही टेली ऑफ सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा दहित में जारी।
2: आकाशवाणी ब्रह्मपुर आलबम गीत क्रम शुणा श्रावणी आलबम गीत गुड़िक गाय सुरेश वाड़ेकर अरुण मंत्री गीत रचना संगीत देखते प्रेमानंद।

0: अपा देखो
1: अरे बर्थडे भाई
0: देखा वाह मोर फेवरेट आलो
1: सब बले शॉपिंग
0: आई नो मा खर्च करिबारो बयस एटा राइट
2: सेविंग करिबारो भी बयस एटा
3: आई नो बापा से पर उचित जागरे निवेश कर मूलधन ऊपर सुध मिलिब जाकु पूणी थरे विनियोग करले सुध मिलि चालिथिबो आई नो ना आरबीआई कहे
4: कर सटीक आरंभ हुआ फाइनेंशियली स्मार्ट
5: ये हेउची मो सानो भाई बहुत दुष्ट कॉलेज रे मार्कशीट फोटोशॉप करके बापा को देखाउथिला खाली मु लाइट बिल रे जीरो अमाउंट देखली तापरे भाबिली कि निहाती एटा फोटोशॉप रही छी नहले जीरो बिजुली बिल पॉसिबल केमिति पचरली तो कहला
6: भाई सब से ऊपर वाला रा दया सोलर पैनल अच्छा
5: मु कहली ओ सेईटा सत कथा भाई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पई विजिट करंतु पीएम सूर्य

आकाशवाणी ब्रह्मपुर समय बर्तमान राति 17:15 आगे जाऊँ शुणु ओडिया संवाद पर शुणे जिला हाजाल रिले प्रचार करुच्छ आकाशवाणी कटक केन्द्र।

0: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲିଭରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगम में जीत हासिल की। म्यांमार में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सातवें साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभ भी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा

0: विश्वविद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
0: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। बस इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में तोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सहायता स्कीम के टेली और न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉकडाउन के नंबर 1454 और वेबसाइट www.tree-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि AI तकनीक स्वास्थ्य देख भाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए AI युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल। हाँ, मैं तैयार हूँ। अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजल अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्र को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन के आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है,
0: नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भांति बन जाती है एकाकी बन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिटता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बुझता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी,
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में

लीजेंड फिल्मकार और जाने माने अभिनेता गुरुदत्त के सहायक रहे राज खोसला ने 1956 में जो फिल्म निर्देशित की वो थी फिल्म सीआईडी।

राज खोसला को आरंभ से ही वुमेन्स डायरेक्टर कहा जाता रहा है दोस्तों। फिल्में जो भी हो लेकिन नारी के चरित्र को राज खोसला ने बड़ी महत्ता दी है अपनी फिल्मों में। 1964 में उन्होंने निर्देशित की फिल्म वो कौन थी, जिसमें अभिनेत्री साधना को मिस्ट्री गर्ल कहा गया था।

0: 1969 में राज खोसला निर्देशित फिल्म आई थी दो रास्ते। अभिनेत्री मुमताज के अभिनय को भला कौन भुला सकता है।
1: मैंने

विराज खोसला निर्देशित 1978 की फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। दोस्तों इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को मैच्योर एज में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था।

1971 में डकैत ड्रामा जैसी फिल्म बनाकर राज खोसला ने धूम मचा दी थी। याद होगा आपको, वो फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश।

वो तो यकीनन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राज खोसला की फिल्में और उन फिल्मों का गीत संगीत हमेशा उनकी यादों को तरोताजा बनाए रखेगा।

0: रखा क्या।
1: तो ये था कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित था अपने दौर के जाने माने फिल्मकार राज खोसला पर। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश कुखले। और अभी जी आज के इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ी। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ी।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम निरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वीएन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पटनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanamemi, a composition of Patnam Subramanian Iyer in Rag Mandari set to Aditaal.

0: श्री येरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तुरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नमाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग जो आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नमाचार्य इन राग वृंदावन सारंग सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन डोलू पर संगति दी श्री वीन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़वा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पाटी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड इन द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी कड़पा एंड दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी दिल्ली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में शाजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। शाजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। शाजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे।

0: उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइन जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President Ou Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a 5-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power Manohar Lal today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratan Lal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, Union Minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has said an expert team of